0: समय और संकल्प दोनों के मूल्य को जान। समय को और संकल्प को सफल करो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

question starts. उसके ऊपर

छोटे छोटे फिर संकल्प है, लेकिन कभी भी धोखा समय पर दे सकते, इसलिए फियरत को भी कब करूं, टाइम क्योंकि इस शिवरात्रि पर बाप को कोई सौगात तो देंगे ना, देंगे हाथ उठाओ, तो बाप दादा यही सौगात पसंद है ना, पसंद है हाथ उठाओ, पसंद है तो सब पास हो जाएंगे, पसंद

identity puzzle.

0: Zaki. Yo, Babdadako. Nervigen Sinter. Kasamachar.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सदा टीचर्स को इसी नजर से देखते हैं कि हर टीचर के फीचर्स में बाप दादा के फीचर्स दिखाई दे, फेस में ब्रह्मा बाप के फीचर्स और बरकुटी में ज्योति बिंदु के फीचर। किसी भी टीचर को देखो तो सबके मुख से यही निकले, ये तो बाप समान है, ये तो ब्रह्मा बाबा जैसे लगते, ये तो शिव बाप जैसे लगते है भी और होनी है। टीचर्स आधार मूरत है, जैसे बाप के लिए कहते हैं ब्रह्मा बाप का सदा यही स्लोगन रहा, जो कर्म मैं करूंगा वो सब करेंगे। ऐसे हर एक टीचर का यही स्लोगन सदा याद रहता है कि जो कर्म, जो बोल, जो वृत्ति, जो विधि हम करेंगे हमें देख सर्व करेंगे। बाप दादा ने ब्रह्मा बाप के गति आप टीचर्स को दिए बैठने के लिए, मुरली सुनाने के लिए निमित्त टीचर्स बाप की गति मिली हुई। ड्रामा ने आप टीचर्स को बहुत बहुत ऊंचा मर्द पा दिया। बाप दादा भी सदा टीचर्स को इसी विशेष महत्व से देखते, महानो महत्व वाले है ना। ऐसे ऐसे है। काफी स्टूडेंट से सर्टिफिकेट ले वे सर्टिफिकेट। बाप दादा तो देखते रहते हैं। क्या पकड़े? ये तो पकड़ी हुई पहले ही है। पकड़े हुए को क्या पकड़े? प्रेम में पकड़े हुए है ना, तब तो टीचर बनी है। अभी कान दादी पकड़ेंगे, बाप तो प्यार में पकड़ेंगे। नहीं, फिर भी हिम्मत रख के बनने में तो बनी है ना। बहुत अच्छी, वही बहुत अच्छे हो, मुबारक हो, अच्छे तो है। अगर टीचर्स नहीं होते तो इतने सेंटर कैसे खुलते? मुबारक हो आप सबको। बाप दादा तो बहुत
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वैसे तो ये संगम योगी परमात्म प्यार के आप पात्र हो, लेकिन आज विशेष

Is it?

love.

Bien.

sushi.

up.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अब दादा सभी बच्चों से यही चाहते समान बनने का दिखाओ, सदा संकल्प में समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समृद्ध बनने नहीं देंगे। और जब तक निमित्त बने हुए बच्चे सदा समृद्ध नहीं बने, तो विश्व की आत्माओं को समृद्धि कैसे दिलाए? बच्चे

0: कोई मुक्त करने में बिजी है क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्ति दाता बनने से स्वयं के छोटी छोटी बातों से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। अब समय
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Just

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: लोग सेवा में नवीनता क्या लाएं, जो अभी तक सेवाएं चली हैं उसके अलावा अब नयापन क्या लाएं?
2: नयापन ये लाओ जो आने वाली है और लोगों नजदीक कम से कम इस चुनाव तो बने, कभी कभी आने वाले संपर्क खुद बनावे, दिलो वे हम ऐसी रिजल्ट आने वालों की होनी चाहिए। अभी आए अच्छा है,
1: संदेश तो बहुत मिल गया सबको, बहुत जा भी रहा है और मिल भी गया।
2: अभी नजदीक आना, कम से कम इस चुनाव नहीं बने लेकिन आने वाले मिलने वाले सुनने वाले तो बने, कम से कम बोलने तो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वैसे अभी शिवा से लगन है, ये बाप दादा ने देखा है कि शिवा से लगन अच्छी है। शिवा के लिए एवरेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए रेडी है, लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा
2: अच्छी आ रही है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई कैसा भी हो, स्वयं को चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना आखिर ये भी कब तक, इसकी भी समाप्ति समारोह तो होना है ना। दूसरे को नहीं देखता, ये ऐसे करता है, मुझे क्या करना है। अगर वो पहाड़ है, मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटना है। ये बदले तो हम बदले, ये है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ू, न पहाड़ हटेगा पर पहुंच सके। इसलिए अगर शुभ भावना है आत्मा के प्रति, तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। जब नंबर वार है तो नंबर वार में स्टेज भी नंबर वार होनी है, लेकिन हमको नंबर वन बनना। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प जलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके परिवर्तन करता है विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, इशारा तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और यही सोचती है, ये तो सच्ची बात है ना, ये तो होता ही है ना, ये तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे? अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो, मुक्ति वरश।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्वशक्तियों का वर्षा, इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। समस्या मुक्त बन सकते हो सिर्फ सर्वशक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रही है कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। पुरुषार्थ के प्रारब्ध का अनुभव अभी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषार्थ की तीवर पुरुषार्थ सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं, देवता देने वाला। ये हो तो मेरा पुरुषार्थ, कोई करे

चारों ओर के बच्चों को मोबाइल

0: अटेंशन जय।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

जो की

0: आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, वो कितने दुआएं देंगे, और दुआएं लेना सबसे सहज साधन है आगे बढ़ने का। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं, कर सकते हो तो करो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं, सफल करो खजानों को। सुनाया ना, मन सास से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना, और बुद्धि से समय का खजाना, मन संपर्क से खुशी का कसन। सफल करो तो सफल करने से सफलता मूर्त बनी जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कर्नाटक में बाप दादा ने देखा है कि फर्स क्वालिटी बन सकते जितने फर्स क्वालिटी वाले तो चार स्थान और भी है, उसकी बात नहीं करते, लेकिन कर्नाटक के धरनी से फारिस बहुत निकल सकते। ताली नहीं सब बजाना, निकाल के दिखाना है। नजर पड़ती है लेकिन टीचर्स की नजर नहीं पड़ी है। सुना पांडव, सुना पांडव, बहुत निकल सकते हैं। बाप दादा को कोने कोने में याद आते हैं। यज्ञ कर्नाटक के वारिस चला सकते हैं। क्या समझा? अभी निकालना और बहुत सहज निकल सकते, सिर्फ अटेंशन नहीं दिए, जनरल सेवा में लग गए, पर्सनल सेवा, मनसा, सेवा का चमत्कार वारस निकाल सकते। Yes.

0: क्या समझते हो सकता है ना, हो सकता है। अच्छा 6 मास देखेंगे, 6 मास का टाइम दे रहे हैं। देखो कहाँ से बाइक ज्यादा निकल सकते हैं, कहाँ से बारिश ज्यादा निकल सकते हो नहीं है। जब समय समाप्त होगा तो सब निकलेंगे ना, निकलेंगे जरूर। सुना सिर्फ कांध नहीं लाना करके देखा ना, कर्नाटक वाले कांध बहुत अच्छा लाते, ऐसे ऐसे करते अच्छा कर। अच्छा कर है, क्वालिटी बहुत है। अच्छा बैठ जाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Deep.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सहज को स्वयं भी मुश्किल बन

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी last।

Somos Dios, ya.

0: Sí. Ectosis 7.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये संगम युग की सौगात, बाप और बच्चों का मिलन, सारे कल्प में एक ही बार होते। संगम युग में बार बार होती है, लेकिन एक ही संगम युग में होती। और जीवन कितनी सरल है, कोई हठ योग क्रिया विरिया नहीं करनी है, मेरा बाबा बस। अब मेरा तो भूलता मुश्किल ही है, बाप को मेरा बना दिया तो भूलने की मेहनत खत्म। छोटी सी चीज भी मेरी होती है तो कितनी याद रहती है। बाप को भी हर बच्चा प्यार है, ऐसे नहीं इतने बच्चे पता नहीं मुझे बाबा याद करते हैं या नहीं, लेकिन नहीं, बाप विश्व का पिता है, उसमें भी मुख्य संबंध में कौन है, आप बच्चे। एक है कितना प्यार है, आप कहते हैं प्यारा बाबा, बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे। एक एक बच्चा बाप दादा के दिल का प्यार है।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: I समा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस, सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये करे वो करे, ऐसा नहीं वैसा है, वैसा नहीं ऐसा नहीं, जो पाप ने किया कॉपी करना है बस, कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीनें निकाली है ना, फोटो कॉपी है ना यार। तो ये जो चित्र रखते हैं ब्रह्मा बाप का, भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Sabah
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: देखो परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेंगे ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया तो वो अपना काम तो करेंगे ना, लेकिन हर खेल ड्रामा के खेल में ये भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना, परिस्थिति मास्टर सर्वश्रेष्ठ।

0: efficiency mit as doctor sapna kaam karenge science wale apna kaam karenge government apna kaam karegi जीवन का दान देना, सहयोग देना, जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं है, बुझाते हैं। Sup.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक बार बाप दादा इशारा देते कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई साथ में सेवा में होता ही, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो, आत्मा के रूप में देखते भी है, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, या जो मिक्स संस्कार है वो भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो कि वर्तमान संस्कार भी आते हैं सामने? तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार उस रूप में देखो, तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती है वो नहीं हो। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन जो साथ में वो भी आ जाता है वर्तमान संस्कार, वो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती। तो आत्मा ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा थी, तो ये जो अभी संगठन में रुकावट आती है वो रुकावट खत्म हो जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

साथ हो। एक ही समय पर दोनों सेवा साथ हो। सब चांस मिले सेवा का, ये नहीं सोचो चलते फिरते अपने चेहरे।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ese. ¿Viste?

amiga de

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

विश्व कल्याण गाड़ी।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

नॉट गुड।

Hit him.

che ci trome. Sada. Double touch. Toi pour me. Kairaje.

कैसे भी हो शरीर का हिसाब से

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो निमित्त है

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बेटी करवा ले, अब ऐसी तैयारी कराओ करो जो ऐसी दवाई निकालो जो कभी भी कोई थोड़ा सा तन से या मन से ना खुश हो तो दवाई को याद करते ही खुश हो। What the...

0: किसी के मन में मेरा बाबा बिठा दो तो ये दवाई हो जाए। अच्छा बैठ जाओ, बहुत अच्छा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: श्रेष्ठ रंग है

nicht.

Jesse, Bob. Ucete, uche. Ese. You.

Tränen sind.

0: मुझे नहीं जाते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पवित्रता का वाइब्रेशन

0: सेवा चाहिए, वाणी की सेवा। तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है अपना ओलेना भी निकाल रहे हो, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन और पूछे आपात्मय बाप दादा तो दुखी बच्चों का आवाज सुनते रहते। आप बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, बन रहे हैं, बने भी हैं, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। आज विश्व में सुख शांति संतोष आत्माओं को
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

हार के पीछे नहीं सोचो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Oh, shit.

0: प्यार। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा विशेष संतुष्टता का शक्ति, संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे में एक संतुष्टता की शक्ति में सब शक्तियां

さんとした国家便内情ガイバチゲティエ

बेटा है पक्का कि निकलते भी हो बेटा देवी? अगर बेटा

से भी देखो, आप समझते हो ये अच्छा नहीं करती तो खराब चीज है। तो अगर कोई आपको खराब चीज

आप समान बन जाएंगे।

पता नहीं बनेगी या नहीं बनेगी, ये तो नहीं सोचते।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अच्छा टीचर साथ उठो, अच्छा टीचर सभी स्वयं भी सफल करो और सफल इस वर्ष इस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाना तो सदैव वृद्धि होती जाएगी। हिम्मत दिलाओ। बाप दादा ने देखा है कोई स्थान में मत कम दिलाने की शक्ति है। हिम्मत लाओ, हर कार्य में मनसा में भी वाचा में भी संबंध संपर्क
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Thank you.

Gotta save you.

he said.

Чарът ги на сетя.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

ऐसे तो नहीं, कभी आप मन के मालिक होते वह कभी मन आपका मालिक होता? क्यों कर?

Chicos.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Deal.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साधारण नहीं होता है।

खुशी को जाने ही नहीं देना, खुश रहे।

ciddi.

0: 加一点，是不够甜不的西格尔的呢？我那个西格尔也西格尔呢？
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: See?

Check.

Subtle.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: नंबर वार तो है, अच्छे भी है, तो साथ में किट-किट वाले भी है, लेकिन ये ऐसा है वो समझना अच्छा है, जो रंग है उसको रंग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है, समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है, रंग को रंग तो कहेंगे ना, कई बच्चे

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उनको ये लक्षण दिखाई दे कि ये जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप की कौन थे, कौन है वो बच्चों
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा भी देखते हैं कि सने बाप दादा से सब कहे, लेकिन सने के साथ शक्ति भी चाहिए। इसके लिए अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन बैठने के वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए। कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे में। अगर आप फोटो निकालो ना, आपको खुद लगेगा कि और कुछ होना चाहिए। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग का ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना, पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द छोड़ो। अभी बाप दादा हर बच्चे को ये दो मास दिए, इसमें जितना अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी

मन के मालिक, जिस मन को ऐसे चलाओ जैसे पांव और बांह को चलाते हो, जो चाहते हो वो करते हैं ना। अभी आप जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ रखो, रख सकते हो ना। ऐसे माइंड कंट्रोल, जो चाहे वही मन संकल्प करे। रोज रात को रिजल्ट देखो। आज मन के रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक रही? अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए, तब समृद्ध बन वायुमंडल में समृद्ध पन की शक्ति फैलाओ। बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके बच्चों द्वारा अभी जल्दी समापत्ति कराने चाहते। सुनाया ना, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो दीवार। करना ही है, करेंगे, देखेंगे, ये के नहीं चले।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना शान नहीं होता है, तो आपका भी बड़ी वरना। तो बहुत बढ़ रहा है तुमको अशांति, तो अब रहम दिल बनो, समाप्त करेंगे सदा के लिए, सदा के लिए लिए ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दादा के बच्चे बन मास्टर दादा स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें

si se va a quedar.

Sí.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा, बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए, अच्छे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सब ठीक, आराम से रहे हुए हो? मन भी आराम में, धन भी आराम में, दोनों ही आराम है ना? है? आप मुस्कुराओ, सीरियस नहीं रहो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी निश्चय पर बात नहीं समझना अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने की वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल लेगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कभी नाराज नहीं होना, ना अपने ऊपर, ना कोई आत्मा के ऊपर। खुश रहना, ऐसे तो नहीं सेंटर पर जाके खुशी का एक मास खजाना जमा रहेगा, फिर धीरे धीरे खत्म तो नहीं होगा ना। खत्म होगा क्या? होगा सदा साथ रहना। अच्छा तन मन तन बाप क्यों दे दिया ना, दे दिया है। अच्छा दिल भी दे दिए, दिल बाप को दिए। अगर दिल दे दिए तो आपके पास दिल आपके लिए नहीं है, बाप जैसे डायरेक्शन दे वैसे। तो बताओ, जिसने दिल दिलाराम को दे दी, वो कभी किसी भी आत्माओं से दिल लगाएगा? लगाएगा नहीं लगाएगा। तो दिल लगी की बातें बोल चाल या दृष्टि से वृत्ति से दिल लगी तो नहीं करेंगे। थोड़ी दिल दी है, थोड़ी और से लगाने के लिए रखी है, दिल दे दिए। दिल नहीं लगाना, बाप की अमानत। दिलाराम को दिल दे दी, दिल लगी की कहानियां बहुत आती है। तो कुमार याद रखना, ऐसे तो प्रवृत्ति वाले भी या कुमार भी, लेकिन आज कुमारों का दिन है ना, तो बाप दादा ये अटेंशन दिलाते। कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं है, हमारी दिलाई ने बाप को दे दी तो दिल कैसे लगेंगे। शराबी अगर किसकी दृष्टि वृद्धि कमजोर हो तो कमजोर दिल को यहां से मजबूत करके जाना। इसमें आज ही है सरकमस्टेंसी ऐसे थे, कुछ भी हो जाए, जब बाप दादा से वचन कर लिया, कितने भी मुश्किल आवे लेकिन फिर्द को नहीं छोड़ना। बाप के आगे वचन करना, वचन लेना, इस बात को भी याद रखना। कोई चलते कभी

0: Pech.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yeah.

सर्वकी संतुष्टता। आखर सेवा की मेहनत और समय लगाया, लेकिन दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता चाहे साथी चाहे जनों की सेवा की, दिल में संतुष्टता अनुभव करे। बहुत अच्छा कह के चले जाए नहीं।

0: Si va che sape a che piccina si va carne che sape ne mette pao ne man pao से पढ़ता जाता है जमा खाता जमा हो जाता जैसे टिक टिक टिक टिक जोर से जल्दी जल्दी करो ऐसे मशीन चलती है तो जगह तम्मा बड़ी खुश हो रही
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति का अनुभव कर रहे। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वाचा की सेवा भले करो, तुम दाम से करो, लेकिन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले जाना। अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से, ऐसे ही बाप दादा भी कहते हैं अभी भी, कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सक्सेसफुल कभी भी क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार कहते हो के मानते भी हो, सिर्फ कहते हो या मानते हो? क्या मानते हैं? तो क्यों नहीं सफलता होती? कारण क्या? जब अपना जन्म सिद्ध अधिकार है ना, अधिकार है शक्तियां पीछे वाली सुना अधिकार है

0: आप दादा ने देखा है, मेजर रेड्डी अपन ने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज कर दे, पता नहीं होगा या नहीं, तुझे अपना ही कमजोर पर्सन जितने लेकिन पर्सन
1: जी।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना पाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और पाप के लिए है या परम आत्मा के लिए है? आत्मा नंबर वन आत्मा तो है स्वयं बच्चों के याद के पाप रह नहीं सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बदल जाती है।

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा के पास बच्चों के पत्र वाचित किया, बहुत अच्छी अच्छी हिम्मत किया क्या हम आपस
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक सैंपल के रूप में है,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: से देखते हैं ऐसे आपको चेतन

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आपके लिए

0: Osservatoire. Sajok telanek nemet vagy. Nerman. Hari kisatskarsi. Suyam ko chala sata. Riel kolo ne ke karan.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना, तो आपको भी फोर्स से

forcible.

विशेष अटेंशन रखूं, क्यों?

Listen.

Oh, shit.

मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि।

0: आता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक मत होना अर्थात सफलता, सफलता आप बच्चों का हर एक का जन्म सिद्ध कार्ड, उसको यूज कर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: रूहानियत नैनो से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी अपने में भी शक्ति बढ़ने वाली है। और दूसरों को भी शक्ति देती है। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो रूहानी संकल्प, मनसा सेवा के निमित्त बनते। रूहानी बोल स्वयं को दूसरे को सुख का अनुभव करते शांति का अनुभव करते एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं को जीवन का आगे बढ़ने का आधार बन जाता रूहानी बोल बोलने वाला वर्तनी आत्मा बन जाता रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी जो भी उनके संपर्क में आती है वो सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप लोगों को पता है, पहले पहले जब बच्ची सेवा में गई तो ब्रह्मा कुमारियों को सफेद साड़ियां देख करके वो दरवाजा बंद कर देते थे, दूर से ही दरवाजा बंद कर देते थे। सफेद साड़ी ग्रस्तों को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए बच्चों ने सेवा कैसे शुरू की उनके पोस्ट बॉक्स में डालना थी, क्योंकि पोस्ट तो निकालेंगे तो पोस्ट में कईयों को संदेश मिल जाता था। पहले पहले सर्विस जब आरंभ हुई है तो बहुत मेहनत से शुरू।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने तो बहुत समय से

अभी भी बच्चे तो सेफ है।

0: की सेवा भी कौन करेगा? आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो तो जो परमात्मा के संग के रंग में
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: See?

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा बच्चों की बातें बहुत सुनी, कहते हैं हंसाते हैं बाप दादा को, अच्छा है। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते।

起来，就说就我。

0: संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, बस नहीं करना है, नहीं बोलना है।
1: Stop, oh yeah.

ti.

Ciao, Jessie.

0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने कई बार इशारा दिया कि समय अचानक और नासिक आवश्यक है। कितना भी बिजी हो लेकिन बिजी होते हुए भी एक सेकंड समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे बीच बीच में अशरी अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे। तो अति हलचल समय अचल कैसे रहेंगे? Of change.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हर एक बच्चे को चाहिए इंडिया में रहती है या फॉरेन में रहती है, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है। और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते, लेकिन खुश होते हैं दो प्रकार के बच्चे। एक बच्चे वरदान को

0: फल नहीं निकाले तो सब खुशी होती है। वरदान को फल निकालने के लिए जैसे कोई भी बीज होता है उसका फल निकालने के लिए उनको पानी और धूप चाहिए, तभी फल निकलता। तो यहाँ भी हर बच्चे को जब वरदान का फल निकालना है जिससे विस्तार होता जाए, अपने मन में वरदान का फल द्वारा वृद्धि होती जाए, तो यहाँ भी बाप कहती है कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ। स्मृति स्वरूप के स्थिति में स्थित रहो, बार बार स्मरण नहीं लेकिन स्मृति। ये पानी देना और स्वरूप में स्थित होना, ये धूप लगन। तो ये फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति बढ़ती है और दूसरे को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं। Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो भी आवे खुशी जरूर ले जाए, क्योंकि खुशी हर मनुष्य को आवश्यक चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। तो टीचर्स बना फीचर्स द्वारा भी सेवा करें। अनुभव करें कि ये क्या बन गई है। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन ये सेवा ज्यादा करेगा, क्योंकि जैसे समय नाजुक आएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चेहरा बढ़ेगी, कुछ मिले। इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए, जो कोई आवे वो कम से कम कुछ लेके ही जाए। चेहरे और जलन द्वारा भी कुछ न कुछ लेके जाए। दादा के बच्चे हो ना, बाप दादा तो टीचर्स को देख के बहुत खुश होते, दिल ही दिल में गुण गाते हैं, वाह टीचर्स। सेवा तो करते ही है, और अपने रिजल्ट रात को भी देखते होंगे कि आज की सेवा क्या हुई। अपना चार्ट तो आप ही देखते, जो लक्ष्य रखा सेवा का वो हुआ, अगर नहीं हुआ काटने तो दूसरे दिन डबल करो, खाली नहीं छोड़ो। क्योंकि टीचर्स बनाने में दादा के बच्चे दादा, तो बाप दादा तो खुश होते हैं, चाहे छोटे सेंटर की है चाहे बड़े सेंटर की है, लेकिन त्याग करके सेवा स्थान पर आना ये भी हिम्मत है ना। तो बाप दादा आपके हिम्मत पर तो खुश है, अब और साथी बनाओ और भी टीचर्स निकालो, क्योंकि सेवा बढ़नी है। अभी थोड़ा हंगामा होगा और सब उत्कंठा से आपके आगे आएंगे। सर्विस बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

कोई भी बच्चा ऐसा नहीं।

0: सभी बच्चे आपसे भी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करते हैं।
1: अमेरिका वाले गुड मॉर्निंग करते होंगे, यहाँ वाले गुड इवनिंग और गुड नाइट करते हैं।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

假装烦恼，जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणें से रात रात से दिन करके दिखाते तो क्या आप अपने सकाश वायुमंडल में नहीं फैल

अपने शक्तियों के सकाश से तो का शांति से नहीं छुड़ा सकते। ज्ञान सूर्य स्वरूप को मार्च करो, किरणें फैलो, सकाश फैलो, जैसे

Ciao. Sick.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब भी माया कोई विकराल रूप में भी आवे, क्योंकि हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, अब माया भी सोचती है कि ये जान गए, लेकिन कोई का खेल होता है ना, देखा है कि देखा है यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं, तो सब समझो कि ये कुश्ती का खेल रही है। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है तो साक्षी होगा, खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं, कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ शेर का रूप है, लेकिन अंदर बिल्ली भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए परा रूप ले आती है, क्या होगा पाठ पढ़े, क्या होगा कभी नहीं तो, क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा, क्या पाठ पढ़े जो अच्छा और जो होने वाला है वो और अच्छा। ब्रह्मा बनना जो अज्ञान काल में नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान के बाद होगी। अज्ञान काल में कभी बिजनेस ऊपर नहीं हुआ होगा, अज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, ज्ञान छोड़ते हैं, लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए समझो, तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियां के अनुभवी बना। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्ट हुआ और दूसरा सामना करने की शक्ति के आगे के लिए आप सीख लो। तो ये परिस्थिति, ये तो पाठ पढ़ाने आई है। घबराते हो ना, तो माया समझ जाती है कि ये कपड़ा तो है, मारो अच्छी तरह से। अर्थात सब कुछ छूट गया, ट्रस्टी माना, सब पाप के हवाले कर दिया। मेरा क्या होगा, बस घर का आता है ना तो घर पर होती। अच्छा है और अच्छा होना ही है, निश्चित है। इसको
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं? सिर्फ सोचते हैं, बस बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है, लेकिन कौन सी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई आपसे पूछे

essa.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी कहते तो है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, जब दिल से कहती है मेरा तो ये देव मान जो

मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। दूसरा महीन मैं, जो सुना है मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ, इस

चुप कभी बाप की विशेषता को भी मेरा मान कर मैं का भान रखते हैं। इसको समाप्त क्यों ढूंढा, क्यों कब

0: महीन में बन यही बाप कहते हैं। आज के जन्मदिन पर बाप को सौगात दे दो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कल्याणकारी बनना उस

Christmas.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होके दिल तो भर जाती है ना, उनसे खाली तो नहीं रहती ना, तो दिल खाली नहीं तो दिल आराम कहाँ बैठेगा। बैठने की जगह तो कि नहीं, इसीलिए बाप दादा उस नजर से आपको नहीं देखेगा, लेकिन सच्ची दिल और दूसरा कहता सदा बुद्धि की लाइन के लिए लाइन में डिस्टर्बर नहीं हूं, कट ऑफ नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: रोज अमृत वेले जी करो, मेरे पुरुषार्थ की गति तीव्र है या चल रहे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, जाती

उससे नहीं भगाते, तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि यहां हमको बैठने देंगे it.

fit.

Tschüss.

Awesome.

तो चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय कि समय

ऐसे समय के

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे सेवा और भगवत सासे कर रही है, ऐसे स्वयं को भी स्व के प्रत सेवा स्व सेवा और विश्व सेवा स्वसेवा।

0: क्यों कमजोरी रखते हो? दे दो, छोटे बच्चे बन जाओ। देने के टाइम जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज संभाल नहीं सकता, कोई भी चीज पसंद नहीं आती ना, तो क्या करता है? मम्मी पापा ये आप ले लो। ऐसे ही कोई भी प्रकार का बोझ बंधन जो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाप दादा देखते हैं, एक तरफ ये सोच रहे हैं है तो अच्छा नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, तो ये तो अच्छा नहीं है ना। एक तरफ अच्छा नहीं है कह रही है, दूसरे तरफ संभाल के रख रही है, तो इसको क्या कहें? अच्छा कहें? अच्छा तो नहीं है ना। तो आपको क्या बनना है? अच्छे थे अच्छा ना, अच्छा भी नहीं, अच्छे थे अच्छा। तो जो भी कोई ऐसी बात हो ना, बार बार पाप हसर हसूर है, उसको दे दो। और अगर वापस आवे तो अमानत समझ के फिर दे दो। अमानत में खयानत नहीं की जाती, क्योंकि आपने तो दे दी तो पाप की चीज हो गई। पाप की चीज या दूसरे की चीज आपके पास गलती से आ जाए, आप अलमारी में रख देंगे, निकाल लेंगे ना, कैसे भी करके निकालेंगे, रखेंगे नहीं, संभालेंगे तो नहीं ना। तो दे दो, पाप लेने के लिए आए, और तो कुछ आपके पास है नहीं जो दो, लेकिन ये तो दे सकते हो ना। आग के फूल है वो दे दो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

मसाज
सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो आज के दिन फर्श को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो। हाथ उठाओ, देनी पड़ेगी। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना संस्कार को सदा के लिए हाथ उठा रहे हो, फिर से उठाओ।

सभी बच्चों को चाहे या सन्मुख बैठी है चाहे दूर बैठी

be. Bab tetapi maniman me. Dance kar rahe hai baba jeeva.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अपने भाई बहनों के ऊपर रैप दिल बनो और रैप दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव सुदैव किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको रहम है उस आत्मा उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं है। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है, मतलब का रैम नहीं, सच्चा रैम, मतलब का रैम भी होता अंदर लगा हुआ किसी आत्मा के प्रति और समझते हैं रहम पर तो वो हुआ मतलब करें सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देवान नहीं, आत्मा आत्मा पर रहम कर रही दे अपमान वादी के किसी भी आकर्षण
3: डायरेक्ट दाता से लो।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं बाबा को पता है, हाथ उठवाएंगे तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं जिस चीकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार है, बाप दादा को पता है कितने तैयार है कौन तैयार है, अभी भी और अंतर्मुखी सूक्ष्म चीकिंग करो। अच्छा, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ, नाराज नहीं किया, राशि किया, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प व्यर्थ की जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने ही जमा हुआ, सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना का रिस्पान मिला वो चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ऐसे नहीं।

kutsu siapa kan? Anak ni ajak Fira.

Satan, no sé. Ah, tú sí, ya no sé.

जाती है।

是鬼不凶骨，加诺斯哥阿德特达隆布尼卡米阿尼基弗当我给马奥比Yeah.

0: 那个的笔尖锁起来，把小大不干不见的，而且那个的这个的都笔尖锁起来。
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

So

Etche.

0: सुख लेना दुख नहीं लेना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा द्वारा सभी को अनुभव है, जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा वाक कर्म द्वारा भी सेवा करते हो, उसकी प्राप्ति आत्मक खुशी मिलती है। तो चेक करो, सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है? अगर सेवा की खुशी नहीं हुई तो वो सेवा यथारथ सेवा नहीं। कोई ना कोई कमी है सेवा में, इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुश

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: गेस्ट हाउस है अब तो खर्चा नहीं।

0: जय भारत जय विदेश। अब ये अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ, बेहद का वैराग गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती, जाना है याद रहता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: धरनी पर बैठना ये तपस्या की निशानी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जितना प्यार है ना, उतना साथ में प्यार भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। अभी शक्ति को बढ़ो, क्या करेंगे? जो बाप दादा ने कहा है, पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द लगाओ, वायुमंडल बनाओ, एक दो किस सहयोगी बन, हरेक अपने अपने स्थान पर रहते हैं, स्थान को शक्तिशाली बनाओ, साथियों को शक्तिशाली बनाओ, तो क्या करेंगे अभी? नवीनता करेंगे ना, जब मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे जैसे

0: तलब अच्छी करते हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन जब कर्म योगी बनते हो संबंध संपर्क में आते हो उसमें फर्क हो जाता। कर्म योगी की स्थिति उसमें अटेंशन ज्यादा जाए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

see. Purusharathame. Sada. Sadness.

passada.

Siete.

Precisamos.

Yep.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: डबल विदेशी परसेंटेज के बिना फुल बन गए तो बाप दादा चाहे भारत वाले भी अगर फुल पास हुए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा, क्या करेगा, बस रफ शाबाश दे देगा और क्या करेगा। चित्रों में दिखाती है ना, इन्होंने श्री कृष्ण दिखा दिया। जब तूफान आया, पानी भर गया तो क्या हुआ, सांप छाया बन गया। उन्होंने तो स्थूल बात दिखा दी, लेकिन वास्तव में है रूहानी बात। तो जो रिश्ता बने सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो पाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

یہ آواز سنائی نہیں دیتا، لیکن

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सब दादियों को देखे खुश होते हैं, क्योंकि दादियों ने निस्वार्थ सेवा की है।
2: पॉजिटिव में परिवर्तन करते रहना, नेगेटिव नहीं।

0: सहयोग दे के उठाऊं, सपोर्ट के उड़ेंगे, सबको नजर आएंगे, फरिश्ते फरिश्ते घूम रहे हैं। ये साक्षात्कार होना है, अनुभव करेंगे। पता नहीं कहाँ फरिश्तों का झुंड सृष्टि पर आ गए हमको उठाने के लिए। एक दो को देखो ये फरिश्ते स्वरूप में, ये फलाना है, ये फलाना है, नहीं फरिश्ता है। ठीक है, दादियों से ये सीखो, शुभ भावना शुभ कामना दो। स्टॉक है आपके पास, लेकिन देने में दाता कम बनते हो। नेगेटिव न देखो, न सुनो, न बोलो, न सोचो। गॉड सा के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा है ना, दादियाँ स्टेज पर आती है, सबके चेहरे मुस्कुराने लगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: किस बात पर बाप दादा खुश है?

आजकल की मूर्तियां सुंदर

0: इज्जत बढ़ाए, इसलिए अटेंशन बढ़ाए तो टेंशन संस्कारों का कम होता जाए। दादा ने पहले भी कहा, जब भी टेंशन आवे ना ए लगा दो, बस ऐड कर दो ए, अटेंशन। चलना तो सबको आई, ये तो वायदा है ही पक्का, साथ चलेंगे साथ राज करेंगे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जिस भी सेवा स्थान का सेवा का वृद्धि होती है और निर्विघ्न होती है, उसका कारण सेंटर्स में वीआईपी की सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की पालना कम करते हैं, इसीलिए स्टूडेंट पढ़ते नहीं है और स्टूडेंट रेगुलर सेवा के उमंग उत्साह में नहीं रहे। क्लास करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन अपने उमंग उत्साह में नहीं है। तो ये रिजल्ट है पालना की। मुबारक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इसीलिए बाप दादा सब

0: परम में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है, बिंदु। इसलिए तीन बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल के दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसा। पैसे का महत्व है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो क्या बन जाए? पैसे में भी बिंदी की कमाल है। और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है। और करावनार भी बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका मैदा हुआ? बिंदु का ना। विस्तार में नहीं जाओ, बिंदु तो याद कर सकते हैं। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ, बस ये है पुरुषार्थ। जब कोई समस्या आती है बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है देखो, लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है और बिंदु कितना सहज है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Yoquito.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक

Ich.

0: Sommet Puerto Sommet. Attention, kids, you are here. एक संकल्प को भी व्यर्थ नहीं गवाओ, क्योंकि एक जन्म व्यर्थ नहीं गवाएगा, लेकिन 21 जन्म में व्यर्थ
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज के स्मृति दिवस पर एक एक बच्चे को स्मृति चाहिए। इस स्मृति दिवस पर आज अपने में कोई न कोई विशेषता ध्यान में रख और अपने में धारण करे विशेषता, दिन में विशेषता धारण जो भी अपने में कमी समझते हो उस कमी को आज के दिन समाप्त कर कोई न कोई उमंग उत्साह की धारणा का संकल्प करना। सोने के पहले ये संकल्प करके सोना और अमृत वेले उसी को दोहरा कर हमेशा के लिए अटेंशन दे दे दे दे पाप समान बन जाना ही है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Kabibi, har kanane, kyoka.

मास्टर सर्वशक्तिमान।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Yeah.

صدا. اپنے کو خوش

Sarva Kasanoko Chamakarniki Chabier.

चाबी का नंबर पता है? चाबी

Peace.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

शक्तिशाली।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: से इशारा दे रहा है। अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाए। अपनी चेकिंग करो सूक्ष्म रूप में भी, लगाओ कोई विशेषता या अपने या और किसकी। बच्चों की छोटी सी बात भी होगी ना तो अवस्था नीचे ऊपर हो जाए। दिल खुश, चेहरा खुश,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: कुमान बनाना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Fíjate, caro.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई पत दुआ देवे तो क्या करेंगे, लेके पत दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे, लेके अगर पत दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। पत दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली अपने अंदर स्वीकार कर ली तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर शराब पी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। खराब चीज कोई देवे तो आप ले लेंगे। कोई बहुत सुंदर फल लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है फिर ले लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे ना कि कहेंगे अच्छा तो है चलो दे दिया। कभी भी कोई पत दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो, समझ में आता है ये पत दुआ है, लेकिन पत दुआ अंदर धारण नहीं करो नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। अगर मानो उसको खत्म कर देना, एक पद दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं दे के हल्का कर देना, फिर मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, दूसरा तो पद दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने पद दुआ संभाली दुखी कौन होता है, लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है। देने वाला तो हलवेला हो,

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हर एक वर्गीकरण से ऐसी कोई

टेस्ट को खत्म कर पेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैले, वेस्ट सेवा को बनाओ जैसे